0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो। मंडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है और उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, मदर्स डे आपने सेलिब्रेट किया होगा। वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे होता है, जब हम माँ की बात करते हैं, जब हम मॉम की बात करते हैं, जब हम मम्मी की बात करते हैं, तो एक ही दिन में उसको डेफिनेटली नहीं समेटा जा सकता, लेकिन बस एक रिवायत है, एक स्पेशल हम करते हैं। संडे एक अपने आप में ही स्पेशल डे होता है जिसमें अमूमन फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं, हम बड़े अच्छा सा वक्त गुजारते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ खास करते हैं। ज़िंदगी जो है ना दोस्तों, उसके हर एक पल, हर एक लम्हा बहुत ही बेशकीमती होता है, प्रेशियस होता है, और उन्हें बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी मौका मिले, थोड़ा भी बहाना मिले इन्जॉय करने का, उसको डबल ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स में एंजॉय करना चाहिए, है ना। मौसम की बात कर दें तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त, क्लाउडी वेदर कंडीशंस, और शाम तक का मौसम आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 12 डिग्रीज के आसपास आपको मिलेगा, और ये तो सन भी आपको मिलेगा, सुहावना मौसम भी मिलेगा, यानी कि धूप छांव, हाइड एंड सीक, सन और बादलों के बीच चलती रहेगी और चलता रहेगा लवी डवी शो 9 बजे से 11 बजे तक। और आपको बता दें हमसे राब्ते का नंबर है 416-303-3639। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको, 416-303-3639। डिजिटल मीडिया कोर्स 23 मई से शुरू हो रहा है, बहुत कम सीटें बची हैं, पूरी जानकारी हासिल करने के लिए भी यही नंबर है 416-303-3639। कुछ दबी हुई सी ख्वाहिशें, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए से सपने तो कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें तो कुछ दर्द भरे लम्हात, कुछ थमे हुए तूफान तो कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज तो कुछ ना समझ इशारे, कुछ ऐसे मझदार हैं जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने हैं राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, कुछ उलझने हैं राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, बस इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: FM 101.3, very good morning once again. मैं हूं शिवानी, आपके साथ मेरे साथ हैं आमिर, और बहुत इम्पोर्टेंट से आज टॉपिक पर हम बातचीत आपसे करने वाले हैं। आमिर, अगर हम बात करें आज के जमाने की, तो किसी भी चीज में अगर हम देखते हैं कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, किसी भी फील्ड में किसी एक चीज से काम नहीं चलता
1: जी।
3: हमें अपना जो होराइजन है वो एक्सपेंड करना पड़ता है, चीजें और देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही हम अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या अपने आप को किसी भी हवाले से प्रमोट करना चाहते हैं, ब्रांडिंग के लिहाज से प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिनकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल।
3: और इसमें मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मीडिया, एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलन में है, बहुत पॉपुलर है, और हर कोई चाहता है कि इससे फायदा उठाया जाए। ये जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसमें अगर हमें महारत हासिल हो जाए और बहुत आसानी से हो जाए, और किसी ऐसे जीनियस और एक्सपर्ट से हो जाए जिसने साल दर साल इसी पे काम किया है, तो बस ये सोच लीजिए कि आप जो सोच रहे थे वो आपके लिए पूरा होने जा रहा है। अगले महीने कोर्स शुरू होने वाला है। आमिर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपको भी सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच,
3: प्लेजर। आमिर, जो आपके जो कोर्स चलते हैं डिजिटल मीडिया के, और ये जो प्रोग्राम चलते हैं, जो कोर्सेज चलते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ये सिक्स या सेवन्थ सेशन है,
1: जो सातवां
3: जो अगले महीने से शुरू होगा, तो क्या है ये कोर्सेज, कैसे हमारे लिस्टनर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आते हैं और उन्होंने एक ह्यूज डिमांड पे हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 मई यानी अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है। ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कोर्स है, दोनों चीजें कवर करेंगे, मार्केटिंग भी और प्रोडक्शन भी। इसके जरिए, इसके माध्यम से, इसके सोर्स से ये कंप्लीट करने के बाद लोग अपना कारोबार खुद प्रमोट कर सकेंगे। अब मार्केटिंग पे महीने बाद हजारों डॉलर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल ऑडियंस। जहां तक ले जाना चाहे अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, सारी जिंदगी काम आने वाला हुनर, और उसके लिए नंबर ये रहेगा 416-303-3639।

0: 3939।
1: जी अमित, एक और यहाँ सवाल आता है कि अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात करूं, मुझे भी इतना ज्यादा इसमें फ्लेयर नहीं है, तो अगर मैं खोलने बैठती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो जिसमें से कभी कभी ऐसा लगता है जिसने नहीं पढ़ा है कि ये सब चीजें हम कैसे कर पाएंगे, किसी को दे दिया जाए वो हमारे लिए कर दे। लेकिन बात यही है कि आजकल के टाइम में इतना बजट हर महीने लगाना, और तो क्या जब हम आपका ये कोर्स सीख लेंगे तो क्या हर एक जो छोटे छोटे सी चीजें हैं वो सब को सब आप पढ़ाते हैं उसमें?
0: बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा तो ये है कि लोग करें काम, हम क्यों करें, ये इतना छोटा सा काम है, या कैंपेन लॉन्च करनी है, या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वीडियो बना के डालनी है, तो मैं किसी भी अपने सब ऑर्डिनेट से, किसी जूनियर से कह दूं वो बना के डाल देगा, काम हो जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे भी काम कर रहे हैं तो काम करवाने के लिए भी आपको काम आना जरूरी है।
1: राइट।
0: आप करवाएंगे कैसे जब आपको खुद ही नहीं आता, तो आप उसकी निटी ग्रिटी, उसकी टेक्निकल डायमेंशंस या टेक्निकल मामला उसके आप जानते ही नहीं। एक तो अगर आपने काम किसी से करवाना है तब भी ये कोर्स आपके लिए है, और दूसरी बहुत अहम बात कि ये हम बहुत बुनियादी सतह से शुरू करते हैं। आपने कहा कि कहां से शुरू किया जाता है, ये समझ लीजिए कि डिजिटल मीडिया की एबीसी से शुरू करते हैं,
1: कंप्यूटर ऑन करने से शुरू किया जाता है।
0: अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये कोर्स आपके लिए है। कोई उम्र की हद नहीं है कि किस उम्र से ताल्लुक हो आपका। मेरे पिछले बैच में 72 साल की एक शख्सियत थी, उन्होंने भी ये कोर्स किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया एज कम्पेयर टू अदर्स। ये नंबर मिलाइए, अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है, वीकेंड ओनली, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6। या रहा नंबर 416-303-3639। आप कोर्स में इनरोल कराइए, उम्र भर का स्किल सीखिए, सिर्फ एक महीना, और उस एक महीने में भी 8 दिन आपको आना है, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6, 416-303-3639।
1: क्या बात है आमिर, कुछ चलते चलते कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या क्या इसमें पढ़ाते हैं, और हर हफ्ते में आपने कोर्सेज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, और साथ में जो कंटेंट लिखते हैं, टैग लाइन्स लिखते हैं और जो पंच लाइन लिखते हैं, बड़ा आजकल बड़ा जरूरी होता है कि लोग कहते हैं वन लाइनर में हम अपनी चीज बता सकें, सोचते हैं, लेकिन वो बात वही होती है कि लोग एक बस शुरुआत करने की देर होती है, तो वो भी शामिल करते हैं आप अपने कोर्स में?
0: बहुत अच्छा सवाल है। हम बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करते हैं। पोस्टर कैसे बनाना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, उसका आर्टवर्क कैसे करना है, उसके बाद बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसके बाद वीडियो कैसे बनानी है, आप आउटडोर वीडियो की बात करें, इनडोर वीडियो की बात करें, आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं और उस पर कंटेंट डाल के पैसा बना सकते हैं, वो भी सिखाते हैं। एडिटिंग सबसे बड़ा हिस्सा है इसका। जो भी दुनिया की कोई भी रील बनती है उसको एडिटिंग की जरूरत बहरहाल रहती है, तो हम एडिटिंग भी सिखाते हैं। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते हैं कि आपने उस वीडियो को वायरल कैसे करना है, फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, विदाउट स्पॉन्सरशिप कैसे आप एड्स डाल सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट फंडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है आपको, आइडिया जनरेशन क्या होती है, आप ट्रीटमेंट कैसे लिखते हैं, पेपर वर्क कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कैनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सा पेपर वर्क और कौन कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, इस सब के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 416-303-3639। नंबर दोबारा बता देते हैं 416-303-3639।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर।
0: थैंक यू।
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416
3: 303-3639. It's 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
3: पंजवा महान तीन दिन का कीर्तन दरबार 16-17 दिन शनिवार अते एतवार दोपहरे 3 बजे लेके रात 10 बजे तक। 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक।
4: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एले वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह अजीत नूं कीती जा सकती है 6474481000। 647-448-1000। सेवा भेजन वास्ते seva2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।
5: 927, दिस इज लवी डेवी शो शिवानी और आमिर के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी जो नींद है, आप सभी मंडे की सुबह में अपने अपने काम पर निकल चुके होंगे, निकलने वाले होंगे, या फिर अगर मंडे ऑफ लिया है तो शायद अभी सो भी रहे होंगे। सोना बड़ा ज़रूरी है, नींद पूरी करनी बेहद ज़रूरी है। अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, स्लीप डिसऑर्डर के हम शिकार होते हैं, तो ना सिर्फ स्लीप रिलेटेड बल्कि दूसरी बॉडी में जो और सारे ऑर्गन्स हैं वो भी काम करने में थोड़ी सी अनअवेलेबिलिटी शो कर देते हैं, लिहाजा हमें और बहुत सारी होस्ट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आने लगते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। डीप स्लीप के फ़ायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर जो सबसे अच्छी नींद होती है बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM and 2 AM, रात में 10 से सुबह 2 बजे तक, हमारी जो बॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन। और हम सभी जानते हैं मेलाटोनिन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिसको हम GH कहते हैं, विच रिपेयर सेल्स एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। सो मेलाटोनिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट गोज अराउंड एंड मॉप्स अप फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे एंड प्रिवेंट्स सेलुलर एंड DNA डैमेज। और ये जो मेलाटोनिन है जो स्लीप के लिए, अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके सप्लीमेंट्स हमें ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, लेकिन ये हमें नींद से भी मिलते हैं। और अगर 3-4 घंटे की डीप स्लीप हम लेते हैं, प्रेफरेबली जो टाइम बताया गया है स्पेशलिस्ट ने वो रात में 10 से सुबह 2 बजे के बीच में, तो इस दौरान तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद आप थोड़ा सा लेट सो रहे हैं, तो जब भी सोएं आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उस सारी चीज़ों की कोशिश ज़रूर आप कीजिए जो अच्छी नींद आपको देने में मददगार साबित हो। और इसी के साथ 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल, 416-303-3639। और कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स का। अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कीजिए या किसी को अगर हायर भी कर रही हैं तो ये ज़रूर आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप जिसको हायर करते हैं उनको आप बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप प्रमोट कर सकते हैं खुद। बेसिक से ये कोर्स शुरू होता है, सिर्फ आपको कंप्यूटर अगर ऑन करना आता है या फिर वो भी नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप बस एक इरादा लेकर आइए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये जो कोड बहुत आसानी से सिर्फ एक महीने में, चार महीने के 8 दिन आपको आना है, सैटरडे और संडे, कन्वीनियंटली सैटरडे 1 से 6 बजे तक दोपहर में, संडे भी 1 से 6 बजे तक। और इसमें पोस्टर क्रिएशन, आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग, और इसके बाद आउटडोर और इंडोर वीडियोस कैसे बनाते हैं, लाइटिंग का क्या ख्याल रखा जाता है, टैग लाइन्स कैसे लिखी जाती हैं, आपको गवर्नमेंट से जो फंडिंग रखी हुई है आपके लिए कैसे, कौन से पेपर वर्क से आप उसको हासिल कर सकते हैं, अपना YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड क्या होते हैं और जो स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं होते हैं वो कौन कौन से ऐड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप महज एक महीने में, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आकर सीख सकते हैं। नंबर घुमाइए 416-303-3639, ये है लवी डवी शो और अगला गाना आपके लिए।

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058 191001, license number 12374.
9: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
10: बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया। बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया। किसी ख्वाब सा कोई शख्स था जो सहर से पहले चला गया। हमें आसमां से गिला नहीं, तेरी रहमतों पे यकीन है। जिन्हें जिंदगी ने शिकस्त दी, किसी मौतसी ने बचा लिया। किसी मेहरबान की दुआओं से ये सफ़र नसीब हुआ मुझे। जिन्हें रहबरी का गुरूर था, उन्हें रास्तों ने मिटा दिया। सदा हंसते रहने का हौसला तेरी आरजू ने अता किया। बड़े गहरे जख्म थे वक्त ने जिन्हें रफ्ता रफ्ता भुला दिया। तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, ये जो एतबार का वस्फ था कहीं दिल से दूर चला गया। कोई वक्त था कि ये नाम भी बड़ा मोतबर था जहान में, वो जो तेरे इश्क का दौर था हमें बाकमाल बना गया।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
3: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
4: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही है, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
3: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
4: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाए। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही है, बहुत लिमिटेड सीट्स है हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
3: जी, 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लवी रवि शो आप एंजॉय कर रही हैं आमिर और शिवानी के साथ। 416-303-3639 हमसे राब्ते का नंबर है। एक बार फिर से बता दूं, 416-303-3639। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हमेशा से ही कुछ ना कुछ शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने वीडियो शेयर करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग से कई बार वीडियोस बहुत बार ऐसे शेयर करते हैं कि लोग दीवाने हुए जाते हैं। उन्होंने लेटेस्ट जो अपना वीडियो डाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 32 साल बाद वो उस स्टेशन पर पहुंचे जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ का क्लाइमैक्स शूट हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, ये जो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं इंडियन सिनेमा की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी हसीन हो जाती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्हीं में से एक है। हाल ही में इस फिल्म के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक बहुत बड़ी मांग भी कर डाली। क्या था ये वीडियो? 32 साल के लंबे गैप के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आपटा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे। ये वही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जहां ये इस फिल्म का मशहूर क्लाइमैक्स शूट हुआ था, जिसमें शाहरुख खान चलती ट्रेन से हाथ बढ़ाकर काजोल यानी सिमरन को खींच लेते हैं। अनुपम खेर ने अपनी इस यात्रा का, अपनी इस जर्नी का एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा शेयर करते हुए लिखा कि 30 सालों बाद उसी जमीन पर कदम रखना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि जब वो आपटा रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो उन्हें बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं हुआ कि फिल्म की शूटिंग को इतना लंबा वक्त बीत चुका है। वक्त उनके लिए मानो ठहर सा गया था। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि जब 1995 में वो इस फिल्म की, इस सीन की शूटिंग कर रहे थे, तब यूनिट के किसी भी मेंबर ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये जो सीन है ये इंडियन सिनेमा के सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे मेमोरेबल और यादगार पलों में से एक पल हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, उस वक्त शूटिंग करते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि शाहरुख खान और काजोल का वो सीन इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार पलों में शामिल होगा। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी यही है, आपको उस पल की वैल्यू का एहसास बहुत बाद में होता है। कितनी सही बात बोली है। उन्होंने सरकार से एक मांग भी की। उन्होंने कहा, मेरे दिल से इच्छा है कि महाराष्ट्र सरकार इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करे। दुनिया भर की फिल्मों की एक ऐसी लोकेशंस लोगों के लिए यादों और फीलिंग्स का एक हिस्सा बन जाती हैं। हमारे यहाँ भी सिनेमा की इस विरासत को उसी सम्मान के साथ सहेजना चाहिए। जादू सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, कुछ जगहों में भी होता है। यश चोपड़ा जी की गर्मजोशी, सादगी, उदारता, उनकी काइंडनेस, रिश्तों को बनाए रखने के उनके एहसास और उनकी पंजाबी झप्पियों को बहुत मिस किया। बताते चलें कि 1995 में आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज भी उतनी ही नई और उतनी ही रेलेवेंट, प्रासंगिक लगती है जितनी 30 सालों पहले लगती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्रेज हर जनरेशन के लोगों के सर चढ़कर बोलता है और हमें बैक टू मेमोरी और डाउन द मेमोरी लेन ले जाता है। कोयल कूके हुक उठाए, घर आ जा परदेसी। दिस इज लवी डवी शो। 416-303-3639।

0: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट देके आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं ए टू जी. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: Good morning. I'm well. How are you?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिस्टनर्स जो नए नए लिस्टनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग ज्यादा आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं क्योंकि कनाडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा

0: 416-303-3639. हफीव, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है.
0: अमेजिंग.
1: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स देने में.
0: क्या बात है. तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके. 416-303-3639. हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच.
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं.
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए. रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए.
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा. कॉल 416-303-3639. इट्स 416-303-3639.
0: जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. आप सभी के दोस्तों के नाम ये कुछ लाइनें. जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. अब जाने कौन सी नगरी में जाकर आबाद है मुद्दत से. मैं देर तलक रात जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे. कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे. मैं सारे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. वो पल भर की नाराजगी, वो पल भर की नाराजगी, वो मान भी जाना पल भर में. मैं खुद से जब भी रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है and no fee until victory.
8: Car accident या slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law से Sayyed M. Raza.
7: जहां सिर्फ वादे नहीं, result मिले।
8: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
9: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
10: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ।
11: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਨਿਕ ਰੋਡ ਕੈਲਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474481000। 6474481000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12: Sif Mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: CMRFM 101.3 पर यह है लवी डवी शो विद आमिर एंड शिवानी. नंबर टू कॉल 416-303-3639 और बड़ी जल्दी 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स शुरू हो रहा है. बहुत कम सीटें बची हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट पूरी तरीके से आप कर सकेंगे. और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को आप प्रमोट करना चाहते हैं, खुद अपने आप अपने घर का चाहे वर्चुअल टूर आप पोस्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं अपने तरीके से, क्योंकि अपना जो काम होता है ना, वो अपने बेबी अपने बच्चे की तरह होता है. हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए. और अगर अपने ख्यालों को अपने थॉट्स को हम खुद पोस्ट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उसकी फील ही अलग होती है, उसका रिजल्ट ही अलग होता है. ये सब आप कुछ कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से सिर्फ 4 हफ्ते में, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, सैटरडे संडे 1 बजे से 6 बजे तक. सैटरडे 1 to 6 PM, संडे 1 to 6 PM. यानी ये 1 महीने का कोर्स है जिसमें आपको 8 दिन अटेंड करने हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन. इसमें आपका बेसिक से शुरू होता है. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये समझ जाइए कि ये कोर्स आप ही के लिए है. वो भी नहीं आता, दिल में बस एक थॉट है कि हमें ये करना है, तो भी ये कोर्स आप ही के लिए है. ABC से शुरू होता है, बेसिक से शुरू होता है और मोस्ट एडवांस लेवल पर जाकर आपको प्रोफेशनल बना देता है महज 4-8 दिन अटेंड करने के बाद. और पोस्टर क्रिएशन से लेके आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, आपका वीडियो मेकिंग जिसमें आपका इंडोर आउटडोर शामिल है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अपने बिजनेस के लिए आप टैगलाइन कैसे लिख सकते हैं, कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने लाइटिंग का क्या इफ़ेक्ट है, आप कौन किस तरीके की जो लाइटिंग है वो आपकी प्रोडक्शन पे फ़र्क डालती है, असर डालती है. यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, एडिटिंग की पूरी आपको नॉलेज दी जाती है और एड्स के बारे में पूरी बात की जाती है कि जो विदाउट स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं या जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, पेड ऐड होते हैं और अनपेड ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं. यानी A to Z आप प्रोफेशनल बन जाएंगे और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स बनाना हो, टिकटॉक हो, एवरीथिंग में आप प्रोफेशनल होंगे महज 1 महीने में, यानी कि 4 हफ्ते में. हर हफ्ते में आपको सिर्फ 2 दिन आना है. कन्वीनियंटली आपके लिए ये क्लासेस रखी गई हैं 1 बजे से 6 बजे तक सैटरडे, 1 बजे से 6 बजे तक संडे, और महीने के 8 दिन में आपको ये प्रोफेशनल बनाएगा ये कोर्स. 23 मई से शुरू हो रहा है. ज़्यादा जानकारी के लिए 416-303-3639 और अगला गाना आपके लिए, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, खुददार से. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.

0: राजधानी राजधानी राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: लवी डवी शो 416-303-3639। दोस्तों, अगर आप भी वजन से परेशान, बढ़ते वजन से परेशान हैं, वजन कम करना चाहते हैं, अराउंड द स्टमक जो हमारा फैट होता है उसको कम करना चाहते हैं, तो फिर से बात वही आती है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत वॉच व्हाट यू ईट, ये एक टैगलाइन है जो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए 24/7 को, इस टैगलाइन को। और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं, हमारे जो साउथ एशियन किचन में जो स्पाइसेस होते हैं, वो खुद ही अपने आप में इतने इफेक्टिव होते हैं, टेस्ट, खाने के टेस्ट को तो इन्हांस करते ही हैं, हमारी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा हमें देते हैं। और आज हम बात करेंगे कैसे इन्ग्रीडियंट्स का जो खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर के तौर पर हमें मदद करती है और हमारा जो सेहत है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा करती है अच्छी सेहत में। हम बात कर रहे हैं फेनल सीड्स की, जिसको हम सौंफ कहते हैं। अगर आप इस समय में चाहते हैं कि वज़न हमारा बिल्कुल कंट्रोल में रहे, अच्छी नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, छोटे छोटे एफर्ट्स भी मायने रखते हैं, चाहे वो एक पानी का गिलास ही क्यों ना हो, पानी का एक कप ही क्यों ना हो। लो कैलोरी जो फूड है, अगर आप अपने वज़न को वॉच कर रही हैं तो लो कैलोरी फूड तो डेफिनेटली यस है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बड़ी ज़रूरी है। और कहते हैं कि जो सौंफ होता है वो स्किन को, हमारी स्किन में शाइन लाने में मदद करता है, और इसके अलावा हमारे जो हंगर है, जो अननेसेसरीली जो हम बीच बीच में खाते रहते हैं, उनको कर्ब करता है, उसको दबाता है। क्योंकि जो सौंफ के बीज होते हैं, जो फेनल सीड्स होती हैं, वो उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। हमें सुबह बहुत जल्दी हंग्री होने से, भूख लगने से हमें रुकता है, जिससे हम नेचुरली फुलनेस फील करते हैं और हम खाने पे कंट्रोल रख सकते हैं। भूख लगने की जो पॉसिबिलिटी जब कम हो जाती है, तो हम अपनी डाइट में अपने आप ही अनहेल्दी चीज़ें शामिल कम करते हैं। और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है फेनल सीड्स, एक नेचुरली डिटॉक्सिफायर होता है, इसलिए खाने के बाद हम इसको जब खाते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। फैट घटाने में मदद करता है, इसके अलावा स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। और बनाना भी इसके लिए बड़े आसान है। आप इसको रात में कुछ 2 या 3 चम्मच सौंफ लीजिए, 2-3 स्पून्स ऑफ फेनल सीड्स लीजिए, इसको एक ग्लास पानी में भिगा लीजिए और मॉर्निंग में आप इसको पी सकते हैं। बॉयल करके भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको स्क्रब करके भी पी सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट उसका बहुत सारा असर पानी में आ जाता है और आपके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देता है, स्पेशली इन समर। तो क्यों ना इसको डेली डाइट का हिस्सा बनाइए, जैसे आपने लवी डवी शो को बनाया हुआ है आमिर और शिवानी के साथ। 4163033639।

0: Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ, 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
2: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए, किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही है, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर, 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए, 416-303-3639।
1: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है, इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए, 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही है, बहुत लिमिटेड सीट्स है हमारे पास इसके लिए, 416-303-3639।
1: जी, 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: சிவரா சச்சபாவே தில்ல தத்வாரியே ஃபார் அமேசிங் டிசைனர் ஃபிரேம்ஸ் அண்ட் டிசைனர் சன்கிளாசஸ் விசிட் kandaoptical.com or call 416-922-5263 Kanda Optical, the name you can trust.
1: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो गौर से सुनिए मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए आप हर माह 500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए राज 416-605-2584
2: शगन का दिन चढ़ेगा सजना घर आएंगे टोली लेकर जाएंगे सजेगी शहनाई भी बजेगी लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी शादी हो या थीम शो कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए लम्हा इवेंट्स हर पल मुस्कुराइए जिंदगी मनाइए कॉल 416-522-0543

गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बनकर आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो या गम का मौसम, नजर उसे ही ढूंढती है हरदम। वो बूए गुल था या नगमाए जहां, मेरे तो दिल में उतर गया वो। कुछ अब संभलने लगी है जा भी, बदल चला दौरे आसमां भी, जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। बस एक मंजिल है बुल हवस की, हजार रस्ते हैं अहले दिल के, यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया वो। शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफर था, मिसाले दर्दे सफर गया वो। वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आया कि शाम होते ही घर गया वो। वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

लाडो ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर, और विजिट माई मैकेनिक ऑटो.ca।

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
1: यह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
0: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
2: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारब्रो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9059461000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 4167571000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माई मैकेनिक ऑटो.ca।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए हर सड़क पर हर गली में हर नगर में हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. Wayne'sAutoGroup.com.
2: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
3: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड. आज विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड है, वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग वीकेंड्स जहां पर मैं कहता हूं कि समर का आगाज होता दिख चुका है. यस्टरडे इज वेदर, टुडे इज मैक्सिमम टेम्परेचर्स सनी, 31 डिग्री मैक्सिमम. राइट नाउ इट्स 26, फील्स लाइक 29. टुमारोज टेम्परेचर्स 30 डिग्रीज अगेन, और फिर वेंसडे से टेम्परेचर्स थोड़ा सा यू टर्न लेंगे, 14 डिग्री मैक्सिमम, एंड थर्सडे 15 एंड फ्राइडे 16. लॉन्ग वीकेंड को आप इंजॉय कर रहे हैं. आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे ऑल द वे टिल 2 पीएम. लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग इन. आज न्यूज व्यूज को थोड़ा सा देंगे ब्रेक. कल से होगा हमारा स्केड्यूल एज इज, लेकिन फिलहाल वी विल बी सेलिब्रेटिंग द लॉन्ग वीकेंड विद यू. मिक्स्ड रिएक्शन है टू द चेंजेस अलाउइंग रिटेलर्स टू स्टे ओपन विक्टोरिया डे, क्योंकि ये पहला विक्टोरिया डे है जहां पर काफी रिटेलर्स को मौका मिल रहा है टू स्टे ओपन एंड डू सम गुड बिजनेस मे बी. लेकिन उसको लेकर पब्लिक के तरफ से मिक्स रिएक्शंस है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पीपल डिजर्व अ लॉन्ग वीकेंड, पीपल डिजर्व दिस मंडे विक्टोरिया डे थिंग्स टू बी क्लोज्ड एज ऑलवेज. लेकिन ये पहली बार हम देखेंगे जहां पर कई रिटेलर्स जो है ओपन है. मॉल्स आर ओपन, वॉलमार्ट्स ओपन, लॉट ऑफ द रिटेलर्स आर एक्चुअली ओपन. मे बी देर माइट बी अ लिटल बिट आवर्स को के वेरी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है lot of the retailers are open, including Shoppers Drug Mart as well. And lekin public ki taraf se mixed reaction hai. Federal, provincial, municipal, government offices, Toronto Public Library branches, community centers, banks are all closed today for Victoria Day. And bahar ka tapman right now ho chuka hai takriban 26 degree Celsius, feels like 32. Michael Jackson ki biopic Michael reclaims top spot at the box office. Logo ko film pasand aa rahi hai. Teen Toronto police officers are facing charges in Barcelona. Highway 27 Albion mein ek fireworks retail shop par bhishan aag lagi hai, and the city allows fireworks, and fourth annual Rib Fest is happening in Vaughan right now. Ye pure weekend chal raha hai Rib Fest. Dusri taraf fourth annual Rib Fest is jahan par logon ne dhoom dhaam se shirkat ki hai, and for you and the family also it's an opportunity to go and check out the Rib Fest agar aap shaukeen hain. And iske ilawa 416-593-0055 studio ka number hai jis par aap call kar sakte hain with your song requests. And Toronto Police says officers facing charges were on vacation and not traveling in any official capacity, jo ki Barcelona mein charge kiye gaye hain. And police say the allegations against all police officers are serious but did not provide any details so far. Barcelona mein ye teen Toronto Police officers par charges lage hain. Sources confirm karte hain CP24 officers involved are police constable, three of them, Ivan Glennie, Rich Rand and Calgary 8. And chaliye ye news views sare kuch hum aap tak kal pahunchayenge as always jo sawal.

बारह हमारे हेडलाइंस होते हैं. टुडे वी विल बी प्लेइंग ऑल द सॉन्ग्स दैट यू रिक्वेस्टेड. जुड़वा टू का गीत आ तो सही, लाइनअप हमने आपके लिए कर दिया है. ब्रॉट टू बाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे सुल्तान जी ने टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री पर विक्टोरिया डे वीकेंड लॉन्ग वीकेंड की बहुत भारी सेल लगाई है. एक बार जरूर चेकआउट करें. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज. द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाई राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जो कि 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड. जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम एज वेल एज विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग. आगे चलकर विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे. काव्या होमियो केयर से मीता ओजा एज वेल एज सुल्तान जी विद सम अमेजिंग लॉन्ग वीकेंड डील्स विल बी ज्वाइनिंग अस वेरी सून. चलिए कोई भी अगर ऑफ एयर आपने मैसेज करना है आप 6478631940 पर कर सकते हैं. यू लिस्निंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 p.m. एंजॉय द सॉन्ग एंड आई विल एक्चुअली सी यू टुमारो.

0: जोशी।
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232 Clear Optical by Varun Kanda.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: Swan Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markhamper.
1: Doing business your way.
0: Of Wayne's Auto Group.
2: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
3: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-405-2828.
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी, याद है, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा cholebhature.ca पे चलो।
6: cholebhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे cholebhature.ca। कॉल 905-458-2448.
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
9: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
8: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
7: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
10: Mortgage ka koi bhi kaam, yaad rakhein ek hi naam. Mortgage Architects ke Sunny Joshi. First mortgage, second mortgage, home equity, renewals, bad credit, income issues ke liye, let's talk. Best rates, best service and best mortgage professional, Sunny Joshi, 647-863-1940, 647-863-1940.
0: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16th तक, लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Wayne's Auto Group.
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी. एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं. देर ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर इज 905-450-2828. और देखते हैं कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की क्या धमाकेदार डील्स लेकर पहुंचे सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर सुल्तान जी, आपका स्वागत है.
11: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
7: सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की.
11: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया, क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस, जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था, साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं. तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो है ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 999, सिर्फ 999 में आप 85 इंच का सैमसंग टीवी ले सकते हैं जिसकी रेगुलर $1800 प्राइस थी, सेल पे भी ये $1399 का बिकता है, लेकिन $999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से 55 इंच सिर्फ $399 में या 65 इंच सिर्फ $699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828 हमारा नंबर है, या BramptonAppliances.com ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 905-450-2828 जी
7: 905-450-2828 जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं। अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं। जी सुल्तान जी
11: बिल्कुल जी, बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है, मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का तो $5000 वाला $29.99 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक, $2000 आप 3 पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 मंथ में पे करना है। अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज वो भी 48 इंच का या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव, बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर $16000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9900 में, 9900 में मिलेगा 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ये प्लैटिनम सीरीज है, प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2500 वाला ओनली $1799 में। इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी। विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें, बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी 905-450-2828। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1700 वाला $1099 में पेयर मिल जाएगा वॉशर ड्रायर दोनों। और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं वो भी निंजा क्रिस्पी, निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त, प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी, हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में, जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशन है, जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
11: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
7: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
12: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ,
12: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल,
12: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
12: ऑन बोवेड जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन, टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
9: He's breaking through the midfield. Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट .com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए डॉन वैली नॉर्थ हंडे .com. वुड बाइन एव और डेनिसन स्ट्रीट, मार्कोपर,
4: डूइंग बिजनेस योर वे.
3: मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
5: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
6: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स. और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर पर. गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा इन पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन से आपको करते हैं सर्व. नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन. द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे फॉर योर कन्वीनियंस, 10 AM टू 6 PM. वॉक इन करें या अपॉइंटमेंट बनाएं. और ऑब्वियसली अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो फोन पर कंसल्टेशन करें और दवाई आपको शिप कर दी जाएगी. 647-760-2779. देखते हैं मीता जी आज किस हेल्थ टॉपिक पर करेंगी बातचीत. मीता जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
7: हेलो एवरीवन, क्या आप कोई भी एडिक्शन से परेशान हैं, एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, उसकी एडिक्शन हो गई है, मैरवाना ले रहे हैं या कोई वैपिंग कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं या फिर केमिकल नशा कोई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग इससे एडिक्टेड हो जाते हैं वो चीज़ को काफ़ी बार छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है बॉडी में कि एकदम से आपको तोड़ लगती है जब वो चीज़ आप नहीं ले रहे हो. आपकी लतें दर्द कर रही हैं, आपकी बॉडी में पेन्स आ रहे हैं, माइंड फोगी सा हो रहा है, कुछ भी आपको याददाश्त पे इसका असर आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी लो चली जाती है, रात को नींद तक नहीं आती है एंड काफ़ी बार लूज मोशंस के डायरिया लग जाता है. अब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन काम पे जाना है, तो इन सारे सिम्टम्स के साथ किस तरह छोड़ पाएं? ये जो सारे सिम्टम्स आप देखते हैं इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, कि जब किसी भी नशा आप कर रहे हो कोई भी तरह का और उससे आप एडिक्टेड हो जाते हैं और वो चीज़ बॉडी को नहीं मिलती है तो आपकी बॉडी ये सारे सिम्टम्स देने लगती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इससे एडिक्टेड हो गए हैं. एक तो ये विड्रॉल सिम्टम्स, तो दूसरा क्या होगा कि वही टाइम हुआ कि डेली घर आके शाम को आप जैसे अल्कोहल लेते हैं और फिर कितना पीना उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है. एंड फिर वही टाइम हुआ उसी वक्त आपको अर्ज होती रहती है कि मैं और पी लूं और पी लूं, तो ये जो अर्ज है उसको खत्म करना. तो यहाँ पे दो चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और यही हमारा ट्रीटमेंट करता है कि आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं जिस करके आपको ज़्यादा परेशानी ना हो. तो इसके जो रिसेप्टर्स आपके लीवर में सेट हुए हैं और वो टाइम होता है आपको तंग करते हैं कि मैं नशा कर लूँ, इतनी बारी वो लेना पड़ेगा चीज़, तो उसको हम क्लिनजिंग उसका करते हैं जिस करके क्या होगा कि इसकी तलब है, इसकी अर्ज है वो ख़त्म होती जाएगी. सो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उसके साथ ही आप देखोगे कि बहुत अच्छे से इस पे कंट्रोल आ गया है और आपको जो अर्ज हो रही है वो अर्ज खत्म होती जाती है, आपके विड्रॉल सिम्टम्स पे कंट्रोल आता जाएगा, फिर आपको ना तो तोड़ रहेगी ना नींद की प्रॉब्लम और आसानी से इस नशे को आप छोड़ पाएंगे। सो किसी भी तरह के एडिक्शन वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। ऑल ओवर कैनेडा, यूएस, सारी जगह पे मेडिकेशन हम मेल करते हैं। तो लोकेशन है हमारी 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, एंड मंडे टू सैटरडे क्लिनिक के आवर्स हैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। फ़ोन नंबर है मेरा 6476027796447761. थैंक यू
5: सो मच मीता जी। एंड दोस्तों याद रखें, काव्या होम्यो केयर, मीता ओजा एंड पिनाक ओजा, 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का इंटरसेक्शन। क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779, Kavya Homeo Care, 6477602779.
3: He's breaking through the midfield. Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
1: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
3: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
3: 647-739-8710, license number M200-34504.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
2: Genesis Markham, yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se, ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
7: इश्क वो है जब मैं शाम होने पर मिलने का वादा करूं, इश्क वो है जब मैं शाम होने पर मिलने का वादा करूं, वो दिन भर सूरज के होने का अफसोस करें, वो दिन भर सूरज के होने का अफसोस करें।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: 10 meter. Bas inna ko yaad rakho. Tuhanu upparon langdiyan bijli diyan power lines to katto kat 10 meter dur rehna chahida hai. Ontario vich bijli to hon wali mautan da ik pramukh karan power lines han. Ate bina chhue vi tuhadi maut da karan ban sakdiyan han. Jekar tusi bahar kaam kar rahe ho ta upparon langdiyan power lines wal dhyan diyo. Apne aap nu ate apne upkarna nu inna to katto kat 10 meter दूर रखो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों से नेहा esasafe.com/stoplooklive ते होर जानो
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता एक घर बनता है इरादों से जी जान मेहनत से अपने इरादों को एक नया मुकाम दें अपनी मेहनत को अंजाम दें कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन 6478661086 राज जोशी नाम ही काफी है
3: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी उर्दू पंजाबी और तमिल में विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com Woodbine Ave और Denison Street Markham पर मेंबर ऑफ Wayne's Auto Group
4: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940

0: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਈਡ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਚਿਪਸ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਤੇ ਅਤਰੰਗੀ ਪਲੇਲਿਸਟਸ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਆਇਲ ਚੇਂਜਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਚੈਕਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸਟਾਪ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ।
1: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
2: क्रेडिट कार्ड, GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक। 416-671-0577। 416-671-0577। ऑल डेट सॉल्यूशंस .ca।
3: 32, 55, 80।
4: शाबाश।
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
4: ओ काउंटिंग नहीं, ये ते 32, 55 ते 80 इंच दे टीवी ने, जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते। 32 तो 80 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगूजी। कॉल 9054502828। 905-450-88।
5: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940। 6478631940।
6: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बुझा सका है कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कहां चिराग जलाएं, कहां गुलाब रखें, छते तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. एंड याद रखें, फ्री सेमिनार सैटरडे को होता है 12:30 to 3:30. दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो. फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है. आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, चाहे आप अकेले जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं. एंड गो एंड चेक इट आउट. 905-206-1008 मिसागा में इनका ऑफिस लोकेटेड है. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून
1: जी आपको भी. एंड मोहम्मद साहब, आज क्या दिमाग में आपके आ रहा है, क्या इतने सालों से विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग के जरिए you've helped people earn $2,000 to $6,000 महीने का, वो भी US, आपके दिमाग में आज क्या आ रहा है? What is it that you want people, खासकर the times that we are going through right now?
2: बिल्कुल सनी जी, देखें अभी जैसे हालात आगे आ रहे हैं तो I'm seeing like a chaos. देखें अभी लोगों की mortgages भी नहीं पे हो रही और हालात आगे से और worse आ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा स्किल ले लें जो पिछले 18 साल से हम एक सेम लोकेशन से अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं. और वो ये है कि एक ऐसा स्किल के जो भले मार्केट नीचे जाए भले मार्केट ऊपर जाए, 100% रिसेशन प्रूफ जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का. और मोस्टली लोग इसमें पैसा लूज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है. और दूसरा ये है कि वो डरे होते हैं कि हम इसमें पैसा ना लूज कर दें. देखें ये जो डर होता है ना, इसका रीजन सिर्फ एक चीज है और वो क्या है कि नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू यू. अगर आपके पास ये नॉलेज हो, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो, एक एनवायरमेंट में आप बैठे हो कि देखें आज सुबह हमारी 8:30 पे लोग डन हो गए थे. और हर रोज ऐसा ही होता है. अच्छा, काफी लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो 100 to $300 अच्छा ये मिनिमम है. ये बाय द वे मैं बता दूं, लोग 15,000-20,000 US महीने का बनाते हैं. ये एक नॉर्मल सी बात है. अभी लोग ये सुनते हैं जब तो कहते हैं हाउ इट पॉसिबल कि मैं 14 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे काम करने के बाद भी मेरे पास महीने में 5,000-7,000 नहीं आता, तो ये कैसे बनाते हैं? बिलीव मी, ये मेरा चैलेंज है कि लर्न द पावर ऑफ 90 मिनट. इसका मतलब है कि सिर्फ हमने 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. आके देखें कैसे हाउसवाइफ्स घर से बैठ के जो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे विद इन 10-20 मिनट. ये 90 मिनट की जो हमारी ये विंडो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. देखें अगर मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपने कमाई चेंज करनी है ना, तो उसमें दो चीजें आप चेंज करें. एक उसका तरीका चेंज करें और दूसरा द वे यू थिंक उसको चेंज करना है. देखिए जिंदगी में हमारे पास हर वो चीज जो आती है ना, वो आती है हमारी पावर ऑफ हमारी थॉट से.

0: अगर आप चीजों को डिफरेंट वे से सोचना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को आपने चेंज करना है. अगर आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलें. और डोंट वरी अबाउट फ्यूचर. यार मैं ये समझा के थक गया हूं कि हम लोग ना बैठ के फ्यूचर की वरी कर रहे होते हैं. वरी नहीं करना, फ्यूचर की प्रिपरेशन करनी, उसके लिए तैयारी करें. आए, आके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है. यू हैव नथिंग टू लूज, अ लॉट टू गेन. आके सेमिनार अटेंड करें. आई बेट यू आप कहोगे कि यार ये हमने इतने साल क्यों वेस्ट किए हैं. आए आके देखें कि कैसे आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं. देखिए, दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको फोन पे सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है कि आपने क्या करना है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आके एक दफा देखें तो सही कि ये क्या चीज है और कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हैं. तो कॉल करके अपनी सीट बुक करें एट 905-206-1008 और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड.
1: बिल्कुल जी, 905-206-1008. मोहम्मद साहब ने जो कहना था कह दिया. अब बारी हमारी है. जिनके पास आप अगर अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सैटरडे को आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं, 12:30 से 3:30 के बीच में आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवाएं कॉल करके. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 से $6,000 मंथली कमा सकते हैं, वो भी यूएस. चलिए 905-206-1008 905-206-1008 नंबर है जिस पर आपने करना है कॉल. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.

0: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 6478661086 6478661086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda।
4: ये वो time of the year है जिसका आप wait कर रहे थे। Demonstrator event at Don Valley North Lexus May 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection के लिए Don Valley North Lexus जल्दी visit करें। जल्दी करें। Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment, walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters 2897484040 2897484040। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
5: किसने दस्तक दी है, ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? रोशनी ही रोशनी है हर तरफ, मेरी आंखों में मुनव्वर कौन है? आसमां झुक झुक के करता है सवाल, आपके कद के बराबर कौन है? हम रखेंगे अपने अश्कों का हिसाब, पूछने वाला समंदर कौन है? सारी दुनिया हैरत है किस लिए, दूर तक मंजर बबंजर कौन है? मुझसे मिलने ही नहीं देता मुझे, क्या पता ये मेरे अंदर कौन है? क्या पता मेरे अंदर ये कौन है?

0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
1: सुनदेव, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
2: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लियावे।
1: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
3: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
4: Apne kareebi ko khone se bada koi gham nahi. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center mein aap aur aapke parivar ko shanti se is avsar par afsos karne ka waqt milta hai. 8 saal ka lamba tajurba, har faith aur har dharm aur culture ke liye yahan complete range of cremation and memorial aapke choice ki exclusive facilities bhi uplabdh hai. Har kadam hum aapke saath. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcbc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकुसी। एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं। देर ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर इज 9054502828। और देखते हैं कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की क्या धमाकेदार डील्स लेकर पहुंचे सुल्तान जी। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर सुल्तान जी, आपका स्वागत है।
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
5: सुल्तान जी। सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की।
6: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया, क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस, जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं। तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो है ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 999, सिर्फ 999 में आप 85 इंच का सैमसंग टीवी ले सकते हैं, जिसकी रेगुलर $1800 प्राइस थी। सेल पे भी ये 1399 का बिकता है, लेकिन 999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। 55 इंच सिर्फ 399 में या 65 इंच सिर्फ 699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकुसी, ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 9054502828 हमारा नंबर है, या BramptonAppliances.com, ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 9054502828 जी
5: 905-450-2828, जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं। अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं। जी सुल्तान जी।
6: बिल्कुल जी, बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है, मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का, तो $5,000 वाला $29.99 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक। $2,000 आप थ्री पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 मंथ में पे करना है। अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज वो भी 48 इंच का, या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए, तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव, बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर, $16,000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9,900 में, 9,900 में मिलेगा 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर एनर्जी सेवर एनर्जी स्टार, ये प्लैटिनम सीरीज है, प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2,500 वाला ओनली $1,799 में। इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी। विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें, बोवेट एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी, 9054502828। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला $1,099 में पेयर मिल जाएगा, वॉशर ड्रायर दोनों। और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं वो भी निंजा क्रिस्पी, निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त, प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी, हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में, जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशन है। जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायसेस 9054502828 9054502828 जी।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
5: जी। 9054502828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायसेस।
7: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
8: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज हुड माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
7: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ,
8: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
7: दैट्स वंडरफुल,
8: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
7: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
8: ऑन बोवेड जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन, टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस.ca।

0: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें. 647-628-0040. दैट इज 647-628-0040.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट राइट टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: काव्या होम्यो केयर काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक जैसे एलर्जीज एस्मा आर्थराइटिस हेयर लॉस स्किन डिसऑर्डर्स हेडेक्स माइग्रेन्स मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स मेंटल हेल्थ इश्यूज हार्ट प्रॉब्लम डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है काव्या होम्यो केयर जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर 10 कोट्रेल बुलेवार्ड Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain, 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940

0: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca।
1: ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
2: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ, 905-450-2828-2828।
3: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
4: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

0: Joshi.
1: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन सीएमआर 101.3 एफएम. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Hasiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आपका वेलकम करती हूँ Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी की आज की राइड में ऑन CMR FM 101.3. दोस्तों दिन अभी बाकी है, एनर्जी अभी बाकी है और अच्छे मोमेंट्स अभी भी बाकी हैं. जो हो गया दोस्तों सुबह से अब तक उसे जाने दीजिए और जो आने वाला है उसे स्माइल के साथ वेलकम कीजिए. आज का मूड सिंपल है, फील लाइट थिंक ब्राइट. और आज का पॉजिटिव कोट कहता है, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसका दिन अपने आप बेहतर लगने लगता है. तो आज दोस्तों अननेसेसरी स्ट्रेस को म्यूट कर दीजिए, दिल को थोड़ा फ्री रखिए और हर पल को नए एहसास के साथ जिए. म्यूजिक रहेगा फील गुड, बातें होंगी दिल से और वाइब्स रहेंगी हमेशा की तरह आज भी वार्म, हैप्पी एंड एनर्जेटिक. तो बने रहिए हमारे साथ और आज के दिन को बनाइए स्मूथ, पॉजिटिव और सुपर रिफ्रेशिंग. गुड आफ्टरनून.

0: जानकारी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन.
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600.

0: கால் 905-206-1008, that is 905-206-1008, or visit winlifetime.com. Win Lifetime.
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
4: Sean Express, Gano ki sweet dish. This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.

0: अपनी पावर ड्राइव विशॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ .com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Purana gaana banaye deewana, Shore Express par khole yaadon ka pitara.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। That's 905-789-6600। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
5: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810। मिड्डा फर्नीचर।
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் புலட்டின் brought to you by ஷான் மீடியா. நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை அஞ்சும் குரேஷி. ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் கால் 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। तो पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। अमेरिका के शिकागो के पास सड़क हादसे में 25 वर्षीय भारतीय छात्रा नव्या गुडुसी की मौत और भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सोमवार को सामने आई। वहीं पंजाब में भाजपा के प्रदेश महासचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर जगमोहन राजू का बयान, पंजाब में हर सिख दंपत्ति को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। और 60 बरस के फिट और हिट सलमान भाई ने दिखाया ये सीन।
0: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
3: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना। शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Ab honge aapke saath Aisha.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस
4: नोट करें देओल ट्रैवल के लेटेस्ट डील्स टोरंटो टू दिल्ली एंड मुंबई इस महीने ओनली $820 में वन वे टोरंटो टू अमृतसर वन वे दिस मंथ 960 में दो बैग्स के साथ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप $1,490 लिमिटेड सीट्स ओनली टोरंटो टू अमृतसर एंड दिल्ली सेप्टेम्बर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,540 दो बैग्स के साथ लिमिटेड टाइम ऑफर टू लोकेशंस टू सर्व यू इटोबिको एंड ब्रैम्पटन देओल ट्रैवल 905-588-5100 and 905-588-4200 588-5100 and 588-4200 California Awning and Canopy, largest awning supplier Canada-wide. Ghar ho ya business, agar aapko chahiye patio cover, pergola, basement canopy ya retractable awnings, to aaj hi contact karein California Awning and Canopy, Brampton ka trusted naam, residential or commercial projects ke liye. Bilkul free barbecue with any canopy or awning installed. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं स्टाइलिश डिजाइंस हैं और स्पेशल ऑफर फिर से सुनिए फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड कॉल कीजिएगा 416-831-4790 416-831-4790 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी स्टाइल भी प्रोटेक्शन भी Vanguard Pest Control, your first line of defense against pests and wildlife. Residential, commercial or industrial pest control, wildlife removal and exclusion. Eco-friendly or safe treatments hain, 100% satisfaction guaranteed hain, licensed hain aur insured hain. Intezaar mat kijiye, apne ghar aur business ko rakhiye safe aur pest-free. Vanguard Pest Control, Ayan Kashif ji se baat karein. 647-966-4355 क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है कोई मिडलमैन नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक सुपीरियर स्टाइल गुड लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम कॉल यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 416-732-3600
5: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम और इस गाने में है कुछ दम

0: dear sponsors for fast, effective and result-oriented ride. Get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Sean Express News Bulletin, brought to you by Sean Media. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद, स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.
1: परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है. ऐसे हौसले से भर देने वाले अल्फाज के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया. ये नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है. इसे मिलाकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इससे पहले कल स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था. पीएम मोदी ने आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के पीएम योनास स्टोरे के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था. पीएम मोदी के मुताबिक ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा. ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये तैनाती दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत की गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के करीब 16 फाइटर जेट्स, ड्रोन स्क्वाडन और चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब भेजे हैं. पाकिस्तानी सैनिक इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं जबकि खर्च सऊदी अरब उठा रहा है. अमेरिका के शिकागो के पास सड़क हादसे में 25 वर्षीय भारतीय छात्रा नव्या गडूसी की मौत हो गई. हादसे में 6 अन्य लोग घायल हुए. हादसा शनिवार देर रात इंडियाना राज्य के लेक काउंटी में इंटरस्टेट हाईवे पर हुआ. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नव्या गडूसू को रात 12:15 बजे मृत घोषित किया गया. लेक काउंटी कोरोनर ऑफिस ने बताया कि उनकी मौत सड़क हादसे में लगी गंभीर चोटों की वजह से हुई है. तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें.
0: डियर स्पॉन्सर्स, फॉर फास्ट, इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड राइड, गेट ऑन बोर्ड शॉन एक्सप्रेस. फॉर इन्फो कॉल 416-569-7812, 416-569-7812, और ईमेल info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी जरूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी जिंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहां पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहां से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आए, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं, ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करें। रोज हम कहते हैं ना, कुआं खोदो और उसमें से पानी पियो, तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि बस स्मूथ चलती रहे हमारी लाइफ में, तो ऐसी स्किल हमें आ जाए। तो क्या ये स्किल इस लेवल पे पहुंचना, खैर आपका लेवल तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचा होगा क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सटेंशली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
2: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे। खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300, आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स $1,500।
1: अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल। तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड हनी आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है।
1: ओह वेरी नाइस। तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें।
2: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है। हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिसेज में होगा इस सैटरडे, आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे।
1: Oh, wow. That's amazing. तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटिफुल सी लाइफ। कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM, 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
2: Thank you, जी. Take care.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: Welcome after a short break, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सोमवार को सामने आई। दिल्ली में रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की फोटो लगाई गई। रेल मंत्रालय ने भरोसा जताया कि इसी साल गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जापान सरकार की टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद से बन रहा है। ये प्रोजेक्ट गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा। कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले के डुबारे एलिफेंट कैंप में सोमवार को दो हाथियों की लड़ाई के दौरान एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। एक हाथी धक्का लगने से बैलेंस खो बैठा और महिला के ऊपर गिर गया, इससे महिला की दबकर मौत हो गई। वहीं एक पुरुष और उसकी गोद में एक बच्चा जो था वो बाल बाल बच गए। अधिकारियों के मुताबिक तमिलनाडु निवासी तुलसी अन्य सैलानियों के साथ नदी किनारे खड़ी होकर हाथियों को नहलाते हुए देख रही थी। नदी में 6 से 7 हाथी थे, उनके साथ महावत भी थे। तभी कंजन और मारतंडा नाम के जो दो हाथी थे वो हिंसक हो गए, बेकाबू हो गए। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर नशे के नए गढ़ के रूप में सामने आया है। सरकार

0: अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव और रिटायर्ड आईएएस अफसर जगमोहन राजू ने पंजाब में कहा कि पंजाब में हर सिख दंपत्ति को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बदले पंजाब सरकार को उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपए का इनाम भी देना चाहिए। इसको लेकर राजू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने सिखों की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए आप सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग की। राजू ने कहा, पंजाब में भी आंध्र प्रदेश वाला 4 बच्चों का मॉडल लागू किया जाना चाहिए। साल 1991 में पंजाब की आबादी में सिखों का हिस्सा 62% था, जो 2011 की जनगणना में घटकर 57% रह गया है। और अब खबर बॉलीवुड से। 60 साल के सलमान खान ने शर्टलेस फोटो शेयर की। फोटो में उनकी टोन्ड बॉडी, फिट एब्स और मस्कुलर फिजिक दिखाई दे रहा है। तस्वीर में सलमान आराम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी फिटनेस के साथ साथ उनके पोस्ट के कैप्शन की भी काफी चर्चा है। शर्टलेस फोटो पहली बार सलमान ने नहीं शेयर की, ये उनका एक तरीके का फैशन फीचर रहा है लंबे वक्त तक। कैप्शन में सलमान ने लिखा, मैं खुद और सिर्फ मैं। अपने आप रहने के 2 तरीके होते हैं, अलोन और लोनली। अलोन रहना अपनी पसंद होती है, लेकिन लोनली तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता। अब इसके आगे आपको खुद समझना है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान जल्द ही फिल्म मातृभूमि में नजर आएंगे। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी होंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था। फिल्म की रिलीज डेट पहले 17 अप्रैल थी, जो टाल दी गई और नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
4: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
4: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में? तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, गुड लुक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी

क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। कॉल यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, 416-732-3600। Vanguard Pest Control, your first line of defense against pests and wildlife. Residential, commercial or industrial pest control, wildlife removal and exclusion. Eco-friendly or safe treatments hain, 100% satisfaction guaranteed hai, licensed hain aur insured hain. Intezaar mat kijiye, apne ghar aur business ko rakhiye safe aur pest free. Vanguard Pest Control, Ayan Kashif ji se baat karein. 647-966-4355, 647-966-4355. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3, आप है मेरे यानी शालिनी के साथ, और आज है विक्टोरिया डे का लॉन्ग वीकेंड, और दिल में बस एक ही फीलिंग है, लेट्स जस्ट गो आउट एंड लिव लाइफ। तो दोस्तों, अपने बैग्स को पैक कर चुके हैं आप और रोड्स पर निकल चुके हैं, और अच्छे अच्छे गानों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ इंजॉय कर रहे हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812, 416-569-7812। और विक्टोरिया डे के अलावा आज 18 मई किन किन मजेदार और मीनिंगफुल डेज के नाम है ये लीजिए सुनिए। सबसे पहले आज है नेशनल नो डर्टी डिशेस डे, यानी आज कोई बर्तन नहीं धोने, आइदर बाहर खाना खाओ या डिस्पोजेबल्स यूज करो। टुडे इज ऑफिशियली अ ब्रेक फ्रॉम द किचन ड्यूटीज। हर आज स्वीट लवर्स के लिए है आई लव रीसे डे, यानी चॉकलेट एंड पीनट बटर अल्टीमेट हैप्पीनेस कंट्रोल, आज तो ट्रीट बनती है। हर दोस्तों, कल्चर लवर्स के लिए आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, हिस्ट्री, आर्ट और हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का दिन। हर म्यूजियम एक स्टोरी सुनाता है, बस सुनने वाला चाहिए। और फूडीज के लिए एक क्लासी डे है, नेशनल चीज सफल डे, सॉफ्ट, फ्लफी और चीजी, आज थोड़ा गौरमे मूड हो जाए। और सबसे प्यारा दिन नेशनल विजिट योर रिलेटिव्स डे, बिजी लाइफ में हम अक्सर अपनों को वक्त नहीं दे पाते, आज का परफेक्ट दिन है उन्हें कॉल करने का या मिलने जाने का, यानी आज का दिन है फन, फूड, कल्चर और फैमिली लव का परफेक्ट कॉम्बो। तो आज का सिंपल मंत्र, किचन से ब्रेक लो, कुछ स्वीट एंजॉय करो, कुछ नया सीखो और अपनों का साथ टाइम के साथ बिताते चलो। रोजाना अपनों को ढेर सारा वक्त दीजिए और सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने
4: मिड्डा फर्नीचर आओ घर दफ्तर नु सजाओ ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही
3: आजमाओ ता सही अपना बनाओ ता सही मिड्डा फर्नीचर कॉल करो 416-901-2810 416-901-2810 Midda Furniture.
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Shagan ka din chadhega, sajna ghar aayenge, toli lekar jayenge, सजेगी शहनाई भी बजेगी लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी शादी हो या थीम शो कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए लम्हा इवेंट्स हर पल मुस्कुराइए जिंदगी मनाइए कॉल 416-522-0543
7: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023 इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज
8: Jamming as much variety into your workday as possible.
9: Radio Resync complete.
10: Hit music.
11: Hit after hot hit.
0: This segment is sponsored by Win Lifetime. Kya aap bhi chahte hain extra income? To Win Lifetime lekar aaye hain trading without investment. Bas 90 minute rozana. Free seminar hai every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Seats hain limited, seekhna hai unlimited. Book your free seat now. 905-206-1008, 905-206-1008 or visit winlifetime.com.
12: हाँ दोस्तों अब वक्त आ चुका है बॉलीवुड कैलेंडर का और आज बर्थडे मना रहे हैं अली जफर एक बहुत ही बड़ा नाम है म्यूज़िक की दुनिया का और इनके जो गाने हैं इतने मेलोडियस हैं इतने मज़ेदार हैं कि बस दिल करता है बार बार इनकी सोलफुल वॉइस को सुनते रहें एक बहुत ही बढ़िया अंदाज में और दोस्तों बॉलीवुड में इनको ब्रेक थ्रू मिला तेरे बिन लादेन के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग और इनोसेंट शाम ने सबका दिल जीत लिया और इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में एक फ्रेश फेस के तौर पर एस्टैब्लिश किया अली जफर का हालांकि सफर शुरू हुआ म्यूजिक से और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली उनकी एंट्री हुई एक लाइट फन फिल्म से और वहीं से ऑडियंस ने उन्हें ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट कर लिया. यानी आज बर्थडे है एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट का जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और पेंटर भी हैं. एक ऐसा नाम जिनकी वॉइस में स्वीटनेस है और पर्सनालिटी में चार्म. अली जफर मल्टी टैलेंटेड नाम है और मेरे ब्रदर की दुल्हन जब फिल्म आई उसमें उनका स्टाइलिश लुक और चश्मे बद्दूर में उनकी कॉमिक टाइमिंग बोथ वर एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक. और इनकी जो वॉइस है वो सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग से लेकर अब भी ट्रैक्स तक हर मूड में फिट बैठती है. अली जफर एक कपड़े ट्रेंड पेंटर हैं और फेमस सेलिब्रिटीज के पोर्ट्रेट्स इन्होंने बनाए हैं. शुरुआत में जिंगल्स और एड्स के लिए सिंगिंग की जैसे हमारे रेडियो शो में बजते हैं और वहीं से उनके म्यूजिक का सफर शुरू हुआ और कोक स्टूडियो पाकिस्तान में उनके परफॉर्मेंसेस ग्लोबली फेमस हुए जिससे उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला. अली जफर बॉलीवुड और पाकिस्तानी इंडस्ट्री दोनों में सक्सेसफुल रहे एक बड़ा रेयर क्रॉस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर और वो लाइव कॉन्सर्ट्स में भी अपनी एनर्जी और ऑडियंस कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं. इनकी पर्सनालिटी क्लासी चार्मिंग और ग्राउंडेड है और उनकी स्माइल एंड वॉइस दोनों ही इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं. तो चलिए इन्हीं के कुछ सुपर हिट गाने सुनते हैं. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3. गुड आफ्टरनून.

नोट करें देओल ट्रैवल के लेटेस्ट डील्स. टोरंटो टू दिल्ली एंड मुंबई इस महीने ओनली $820 में वन वे. टोरंटो टू अमृतसर वन वे दिस मंथ $960 में दो बैग्स के साथ. दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप $1,490 लिमिटेड सीट्स ओनली. टोरंटो टू अमृतसर एंड दिल्ली सेप्टेम्बर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,540 दो बैग्स के साथ लिमिटेड टाइम ऑफर. टू लोकेशंस टू सर्व यू इटोबिको एंड ब्रैम्पटन. देओल ट्रैवल 9055885100 एंड 9055884200 5885100 एंड 5884200. कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड. घर हो या बिजनेस अगर आपको चाहिए पैटियो कवर परगोला बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो आज ही कॉन्टैक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए. बिल्कुल फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं स्टाइलिश डिजाइंस हैं और स्पेशल ऑफर फिर से सुनिए फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. कॉल कीजिएगा 416-831-4790 416-831-4790 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन. कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी स्टाइल भी प्रोटेक्शन भी.

0: Zestin. That is love for money.
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag or South ka tadka. Friday, Saturday or Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam or unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Or price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosas, biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
2: Bhai, mainu kehna vi pehna hai te tuhanu sunna vi pehna hai. Designer frame te branded sunglasses de bathere store dekhe. Par jinni variety Kanda Optical de kol hai, ohda ta jawab hai nahi.
3: Sohne face waliye, uchi heel waliye, Gucci wala sach paave dil te thwariye.
4: For amazing designer frames and designer sunglasses, visit KandaOptical.com or call 416-922-5263. Kanda Optical, the name you can trust.
5: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam, Sanjeev Puri.
6: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
5: You will get full refund if super visa is declined.
6: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
7: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है कोई मिडलमैन नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक सुपीरियर स्टाइल गुड लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम कॉल यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 416-732-3600 Vanguard Pest Control, your first line of defense against pests and wildlife. Residential, commercial or industrial pest control, wildlife removal and exclusion. Eco-friendly or safe treatments hain, 100% satisfaction guaranteed hain, licensed hain aur insured hain. Intezaar mat kijiye, apne ghar aur business ko rakhiye safe aur pest-free. Vanguard Pest Control, Ayan Kashif ji se baat karein. 647-966-4355 647-966-4355 क्या आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है कोई मिडलमैन नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक सुपीरियर स्टाइल गुड लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम कॉल यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 416-732-3600

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: योजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, मधाणिया दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
1: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम।

सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812, और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये तो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकुम। मौसम का मिजाज आज बड़ा मस्ताना है, मौसम का मिजाज आज बड़ा मस्ताना है, सूरज को भी आज खिल खिलाकर मुस्कुराना है। धूप चार दिन की ही सही पर क्या गम है, धूप चार दिन की ही सही मगर क्या गम है। आज के मौसम में खुशियों भरा जबरदस्त दम है, तो बहनों भाइयों गम को भूलकर खुशियों भरे इस दम में, सुनहरे मौसम में जिंदगी का लुत्फ उठाना जरूर मत भूलिएगा। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू, सुइट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
7: जी भाइयों जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. मौसम बदल रहा है. गर्मियों में लोग तेज धूप पसीना और थकान से राहत के लिए इंस्टेंट कूलिंग देने वाली चीजें खाना पीना पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स पैकेट जूस और आइसक्रीम लेते हैं लेकिन क्या ये सही है? बहनर भाइयों आइए सबसे पहले बात करते हैं आइसक्रीम की. आइसक्रीम खाने से हमें लगता है कि शरीर को तुरंत ठंडक मिलेगी, गर्मी में राहत मिलेगी, मूड अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए सेफ ट्रीट है. लेकिन असल में होता क्या है? आइसक्रीम खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. हाई शुगर और सैचुरेटेड फैट से कैलोरी ओवरलोड हो सकती है. इससे मोटापे का रिस्क रहता है. गले की म्यूकोसल लाइनिंग यानी कि गले की अंदरूनी प्रोटेक्टिव लेयर को भी आइसक्रीम प्रभावित कर सकता है. इससे गले में खराश और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है. हाई फैट और शुगर कंटेंट के कारण डाइजेशन सिस्टम भी धीमे चलती है. कई बार हम फ्लेवर्ड योगर्ट खाते हैं. बेनर भाइयों असल में क्या होता है, एडेड शुगर फ्लेवर्ड योगर्ट में ज्यादा होती है जिससे कैलोरी और शुगर इंटेक बढ़ सकता है. प्रोसेसिंग और शुगर इसका प्रोबायोटिक बैलेंस प्रभावित करता है. इसमें मौजूद फ्लेवरिंग एजेंट्स और एडिटिव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर कम करने की मेहनत करता है और अतिरिक्त कैलोरी और शुगर से वजन बढ़ सकता है. तो सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए. गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाले वो कूलिंग फूड कौन से हैं जो हमारी सेहत को एडवर्सली इफेक्ट ना करे. तो बिंदर भाइयों इसमें शामिल है खीरा, तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, छाछ, दही, बेल का शरबत, नींबू पानी, फुदीना, ककड़ी और आम पना यानी कि आम का पानी. बिंदर भाइयों आपको बता दे गर्मियों के लिए ये बेस्ट फूड माने जाते हैं. गर्मियों में थोड़ा थोड़ा पानी भी जरूर पीते रहिएगा. सेहत

0: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है रेडियो वॉइस जतिन के संग। आइए सीधे चलते हैं आयशा मुनव्वर जी के पास। बहन और भाइयों, उनका नंबर जरूर डायल करें 416-428-2165। कर्जा बढ़ता है, गार्निशिंग का नोटिस आ गया है, मैक्सिमम कर्जा माफ करवा देंगे आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी। 416-428-2165। आइए सीधे चलते हैं आयशा जी के पास। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस।
4: थैंक यू वेरी मच जतिन जी, क्या हाल है? ठीक ठाक।
3: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
3: वंडरफुल। प्लीज आपकी वंडरफुल सर्विसेज के बारे में पहले बताएं।
4: जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कर्जे में आना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ना सुना हो। सो लॉट्स ऑफ टाइम लोग कर्जे के प्रॉब्लम के नीचे आ जाते हैं, तो हमारी मेन सर्विसेज में आ जाते हैं कर्जे को माफ करवाना, कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंकरप्सी की सर्विसेज में भी हम हेल्प आउट करते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग्स और क्रेडिट को दोबारा एस्टैब्लिश करके आपको दोबारा फाइनेंशियल ट्रैक पे हैप्पी हैप्पी लाइफ जो है गुजारने में मदद देते हैं।
3: वंडरफुल। बहन और भाइयों, कॉल करना है

0: 6428216. आयशा जी, ये बताएं कि अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है जतिन जी, ऐसा है कि देखिए, ये फाइनेंशियल हेल्थ है। आपने कभी किसी डॉक्टर को फोन करके कहा कि बस मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो? वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यू नेवर नो दर्द किस वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इलाज है। तो सेम ये आपके फाइनेंसेस हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू ना कर लें, कर्जा लिया कैसे गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, कौन से बैंक हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या वापस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेट्स कौन से हैं जिनको बचाना है, और आगे फ्यूचर में कैसे आपने चलना है, प्रोसेस क्या होगा, तो ये सब चीजें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती और ना डिस्कस की जा सकती हैं। हमारा काम है कि प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: वंडरफुल। ये भी बताया कि कौन से डेट्स सेटल कर सकते हैं।
1: जी, ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए। स्टूडेंट लोन हैज टू बी 7 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ स्टडीज। रेवेन्यू कैनेडा के डेट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है गारंटीज दी हुई हैं और बिजनेस अब नहीं चल रहा, तो वो गारंटीज वगैरह भी जो है वो सेटल हो सकती हैं। तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड।
0: और आपने गारंटीज की बात की, तो कई बार हम सुनते हैं कि गारंटीड कर्जा माफ किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: इस गारंटी से मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैं मुखालिफ हूँ इस गारंटी के।
0: अच्छा।
1: उसका रीजन ये है कि अक्सर मैं देखती हूँ कई रेडियो स्टेशन पे लोग बैठे हैं गारंटीज कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये अनएथिकल है, आप किसी तीसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट सपोज जैसे आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो जब तक अगला पर्सन हाँ या ना कर ले, आप कैसे मानेंगे कि जी काम हो गया? तो इसलिए वी हैव टू प्रपोज एन ऑफर कि जी ये अमाउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स को हम प्रपोज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल, बैंक्स ने हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है कि जी हाँ हमने मान लिया या कोई और हम जो है वो ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए गारंटी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाएगा, वो हर पर्सन के लिए फर्क भी हो सकता है।
0: बहुत खूब, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे प्लीज।
1: जी, कॉन्टेक्ट नंबर है
0: 416-428-2165। आयशा मुनव्वर और मैरनी हुसैन जी से आज ही करें बात और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाइए अपना एक और कदम। आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू वेरी मच जतिन।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
3: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021, 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
6: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 3289032232।
7: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
7: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
10: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हमें आपके दोस्त यतीन। यात्रा अपनी सुखद सफल हो, यह चाहता है हर एक इंसान। यात्रा अपनी सुखद सफल हो, यह चाहता है हर इंसान। शुभ उद्देश्य और दृढ़ संकल्प हो तो सहायक बन जाते है भगवान। हाँ जी मित्र भाइयों, हम कई बार संकल्प करते हैं कि हम ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन क्या संकल्प करने चाहिए? आइए ज्ञान प्राप्त करते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, क्या कहते हैं वे, आइए सुनते हैं।
11: इसीलिए हम कहते हैं संकल्प क्यों करते हो, पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में है कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही, तो हम इको नहीं करेंगे।
10: हाँ जी मित्र भाइयों, अच्छे कर्म जरूर करें, लेकिन बंधन में न बंधे। किसी ने तो ये खूब कहा कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, वो संकल्प ऊपर वाले पर भरोसा।
11: अपराध नहीं लगेगा अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगे, तो अब करना चाहिए। फिर देखो संकल्प पूरा करना चाहिए, तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे।
10: हाँ जी मित्र भाइयों, बस प्रभु की इच्छा पर सब कुछ छोड़ दे, कर्म किए जा प्रभु की इच्छा के मुताबिक, अपनी खुद की इच्छा के मुताबिक नहीं। हाँ जी मित्र भाइयों, तभी इंसान सुख को पहचान सकता है। ऊपर वाला हर किसी को सुख देता है, लेकिन कई बार हम पहचानने में गलती कर देते हैं। कहते हैं ना कि बस अब बहुत हो चुका, आओ नई शुरुआत करें। बस अब बहुत हो चुका, आओ नई शुरुआत करें। नई सोच और दृढ़ संकल्प से नवीन जिंदगी का निर्माण करे। लेकिन संकल्प कैसा होना चाहिए? हे प्रभु, हमें शक्ति देना कि ये संकल्प हम जल्द से जल्द पूरा करें। शक्ति उन्हीं से पाइएगा। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरु लक्ष्मी.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाई, ये रेडियो वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। बंदर भाइयों, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों भाई साझेदारी से खेती करते थे। फसल पककर तैयार हो गई तो एक दिन दोनों भाइयों में साथ में मिलकर फसल काटी। इस काम को करते करते रात हो चुकी। दोनों भाइयों का एक एक फसल का ढेर बन गया। फसल को रात में घर ले जाना संभव नहीं था। दोनों ने सोचा कि आज रात खेत पर ही रुककर रखवाली कर देते हैं, सुबह मजदूर लेकर आएंगे। और फसल के दोनों ढेर, जो एक छोटे भाई का था और एक बड़े भाई का, उसे घर ले जाएंगे। रात में दोनों भाइयों को भूख लगी। दोनों ने सोचा कि एक एक करके घर जाते हैं और खाना खाकर वापस आएंगे। पहले बड़ा भाई खाना खाने गया। खेत पर छोटा भाई था। उसने विचार किया कि बड़े भाई की पत्नी है, बेटा है, मैं तो अकेला हूं, मुझसे ज्यादा अनाज की जरूरत बड़े भाई को है। ऐसा एक अच्छा विचार करके उसने अपने अनाज के ढेर से थोड़ा अनाज भाई के ढेर में डाल दिया ताकि भाई को ज्यादा मिले। कुछ देर बाद बड़ा भाई लौट आया। छोटे भाई को खाने के लिए घर भेज दिया गया। बड़े भाई ने सोचा कि मेरा ध्यान रखने के लिए तो मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, लेकिन छोटा भाई अकेला है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, उसे अनाज की जरूरत ज्यादा है। ये सोचकर उसने अपने अनाज के ढेर में से थोड़ा अनाज छोटे भाई के ढेर में डाल दिया। अब दोनों ही ढेर में अनाज तो बराबर हो गया, लेकिन दोनों भाइयों का प्रेम बढ़ गया। बिंदर भाइयों, बात छोटी सी है लेकिन जिंदगी की बड़ी सीख देती है। जब किसी परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की चिंता करते हैं, दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, तो उनके बीच प्रेम हमेशा बना रहता है। ऐसे घरों में कभी भी वाद विवाद नहीं होता। यहाँ परस्पर प्रेम ही होता है और प्रेम जिंदगी का ही नाम है। आइए दोस्तों, प्रेम से रहे और एक दूसरे की मदद करें। ये रेडियो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जी मित्र भाइयों, बॉलीवुड की अजीब दास्तान। मित्र भाइयों, अजीब दास्तान में आज धर्मेंद्र की बात। धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी, नेशनल अवार्ड पाने वाली फ्लॉप फिल्म थी, सत्यकाम। सच्चे रास्ते पर चलती हुई अपनी जिंदगी को एक कड़ी संघर्ष कथा बना लेने वाले हीरो की ये बात थी। सच्चाई की राह पर चलने वाले हीरो की ये कहानी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन नेशनल अवार्ड जीत गई थी सत्यकाम। आज इसे याद इसलिए करते हैं कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी सत्यकाम ने, और यही है अजीब दास्तान। हाँ जी मित्र भाइयों, धर्मेंद्र क्या खूबसूरत अभिनय किया था। रंजीत उस जमाने में संघर्ष कर रहे थे। रंजीत यानी कि वो रंजीत, रंजीत कपूर जिन्होंने जाने भी दे यारो, शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना और खाकी जैसी कई फिल्मों में डायलॉग्स लिखे। रंजीत अपराध की राहों पर जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त था और उस वक्त सत्यकाम टैक्स फ्री कर दी गई थी। सोचा सत्यकाम देख लेता हूँ, उसके बाद अपराध की राह पर चलूंगा। लेकिन सत्यकाम में धर्मेंद्र का रोल देखकर, एक सच्चाई की राह पर चलने वाले इंसान का किरदार देखकर रंजीत कपूर ने अपना मन बदल दिया। उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अपराध की राह पर आगे नहीं बढ़ूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा। और अपराध की राह पर जाने वाले एक इंसान को सत्यकाम ने, धर्मेंद्र के अभिनय ने उनकी जिंदगी की करवट बदल दी। और फिर रंजीत कपूर बॉलीवुड के बड़े राइटर्स में शामिल हो गए। है ना बेंदर भाइयों, अजीब दास्तां बॉलीवुड की। धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम, धर्मेंद्र का किरदार देखकर रंजीत कपूर अपराध की दुनिया में आगे न बढ़े, एंट्री ही न लियो और वापस सच्चाई की राह पर चल पड़े, तो बॉलीवुड में बनाया बड़ा नाम। ये है धर्मेंद्र की अदाकारी का जलवा। हाँ जी बिंदर भाइयों, बॉलीवुड की अजीब दास्तां। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर दा मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
5: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545
6: हाँ जी बेदर भाइयों आइए आपको लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की ओर जिसे स्पॉन्सर किया है टीम सबरवाल यानी कि पी के सबरवाल जी ने। पी के सबरवाल जी से बात और मुलाकात करने के लिए कॉल कीजिए 647-299-4757।

एंड यू वी मीट अगेन ऑन द डे, जहाँ सूरज दादा भी आज कह रहे हैं फुल ऑन चमक चमक के कि खुशियों का फ्राइडे आया है, मोर सो क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड लाया है। विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की उमंगों की शाम से ही हो चुकी है भाई शुरुआत। वो बात और है कि ये वीकेंड का रीजन कुछ भी हो, हर बार अपन को तो आम खाने से मतलब होता है, पेड़ गिनने में अपन का नो इंटरेस्ट है ना। तो लॉन्ग वीकेंड ये वाला हो या वो वाला, अपने लिए इट ऑलवेज मीन्स एक एक्स्ट्रा छुट्टी वाला। एंड हर बार की तरह लिस्ट भी मोटी मोटी वही होती है वैसे तो हम सबकी, की या तो हमें कहीं जाना है या किसी को आना है, उसमें से फिर थोड़ा सा स्नीक पीक कर कुछ पेंडिंग काम निपटाना है और थोड़ा सा आराम भी फरमाना है। सो ऑन दिस दिन गुजरते हैं, छुट्टियां आती हैं, छुट्टियां जाती हैं, हमारी लाइफ की एक्टिविटीज मोर और लेस वही की वही रहती हैं वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि क्यों ना इस बार के लॉन्ग वीकेंड पर कुछ नया किया जाए, वो जो हर बार नहीं करते या वो जो कभी किया नहीं पर हम मन में उसकी हमेशा से इच्छाएं रखते। सोचो सोचो क्या है वो, और फिर बस इस बार कर ही दो।

Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury.

बस एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स। तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।

0: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 416-843-7600।
1: माय प्रॉपर्टी माय चॉइस माय रियल को द रियल स्टेट कंपनी और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट।
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
1: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
3: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m.
3: Filmi Nukar, CMR 101.3 FM पर you are with Swati and Pasini. And time एक fresh breeze new release का, तो गाना जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, it's a freshly released musical collaboration between my favorite composer Amit Trivedi and lyricist Shelly और singer Shehzad Ali. Now Shelly और Amit Trivedi का अगर जो मैं देखूँ ना, इनका combo actually past में बहुत अच्छा रहा है. हमेशा बहुत बेहतरीन गाने दिए हैं दोनों ने मिलके. सो सीइंग दिस कॉम्बो प्रोडक्शन अगेन एक्चुअली मेड मी ईगर टू लिसन टू इट. जब रिलीज हुआ के सुनो तो सही इस बार क्या दिया है. आप देवडी के गाने सुन लें, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स आते हैं. उड़ता पंजाब के सुन लें, काफी पॉपुलर रहे. देन मन मर्जिया के गाने बहुत सुंदर थे. एटी आजाद के काफी सारे प्रोडक्शन हैं इसमें जो सॉन्ग्स हैं. एंड देन चौधरी बहुत पॉपुलर है अभी भी. तो गाना तो मिलकर दोनों अच्छा ही बना लेते हैं ओवरऑल. और कमिंग बैक टू दिस नया ताजा तरीन वाला सॉन्ग, इट्स अ लव बैलेड. काम सा, सॉफ्ट सा, जेंटल सा, मेलोडिक, रोमांटिक है. भव्य नहीं है बहुत कुछ विद हेवी इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, बल्कि सिंप्लिसिटी है इसमें एक प्यारी सी. गुड टीम आई वुड से. एंड दिस वन इज डेफिनेटली वर्थ योर इयर्स. टाइटल इज सुन रांझना. Our fresh breeze new release and a non-film song.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस. बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453 53, 53. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: Ye wo time of the year hai jiska aap wait kar rahe the. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Retro in Metro, Nukkad Classic.

लॉन्ग वीकेंड पर सेलिब्रेशंस आपके दिमाग में है तो एक चीज का और ध्यान रखें कि सेफ्टी को भी साथ में लेके चलिएगा। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, कैंप फायर्स कर रहे हैं, फायरवर्क्स कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो सिटी ऑफ टोरंटो या आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसके बायलॉज एंड फायर सेफ्टी गाइडलाइंस। यू नो व्हाट, यू कैन कीप इट फन एंड फायर सेफ बोथ, दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं, ट्रस्ट मी।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर It deserves.
6: नटवाल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
7: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

एंड फाइनली इंतजार हुआ पूरा, टोरंटो की दोनों नई फेरीज का नामकरण फाइनली हो गया है। और ऐसे नहीं हुआ है ये भाई, सबसे मांगी थी राय। एंड फाइनली एक को नाम मिला लेडी ऑफ द क्वेज, जो 2026 में ही आ जाएगी, यानी कि इसी साल। इट्स बेस्ड ऑन यॉर्क क्वे नेबरहुड एसोसिएशन, क्योंकि 15% वोट्स उन्हीं लोगों के थे, मेजोरिटी रे। ये लेडी ऑफ द क्वेज सवारियों के साथ साथ गाड़ियां भी उठाएगी, सबको जगह मिलेगी इसमें। और दूसरी है टोरंटो आईलैंडर, ये अगले साल आएगी, एंड इट विल बी ओनली फॉर पैसेंजर्स, स्लीक एंड मॉडर्न। देखा, नो नेता नेम दिस टाइम, ओनली नॉन कोमेमोरेटिव टोरंटो की मिट्टी से जुड़े वाले नाम, यही है इरादा। बेसिकली 60 साल बाद $92 मिलियन खर्च करके दो सुपर कूल जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक फेरीज आर कमिंग विद न्यू नेम्स, जिससे एनवायरमेंट भी होगी बचत की तरफ और कैपेसिटी की भी होगी बढ़त की तरफ, और लॉन्ग वेटिंग टाइम्स इन लाइन होंगे खत्म की तरफ। तो भाई साफ हवा का वादा है, इको फ्रेंडली हासिल फ्री आइलैंड टूर हो पाए आपके, यही इरादा है।

0: do advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
3: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
4: Music charts par ye hai on top. Private studio se nukkar indie pop.

0: It's Toyota Red Tag Days at Martville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Martville.com. Ya jai 5362, Highway 7, Markham Bay. Martville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माय रियल को .com. अच्छा, इस बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माई रियलको के ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना

तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। फ्री कंसल्टेशन है, कॉल करें 416-843-7600। संजीव मनोचा फ्रॉम माय रियल को 416-843-7600 और विजिट myrealco.com।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉड की रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद आमिर खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट
4: अमितखुराना.com। ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेन्स फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेन्स एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेन्स एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: Let's turn it up.
7: Let's kick it up.
8: Let's shake it up.

नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं। दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस। कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना। फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है। सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। तो याद रखें rjswati_toronto, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। माई नंबर इज 6478305042, दैट 6478305042।

0: breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: FIFA की टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, फीफा के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान, है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Ghar kahin bhi le

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 4169902462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर It deserves. विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं, और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca. क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 key annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353. You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: अच्छा आज विक्टोरिया डे पर अगर आप फायरवर्क्स करना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं उन्हें देखने तो ध्यान रखें इफ़ यू हैव पेट्स तो उन्हें घर पे ही छोड़ के जाएं क्योंकि कहते हैं कि तेज़ आवाज़ें और चकाचौंध वाली रोशनी जो होती है वो उनके लिए हो सकती है ओवरवेलमिंग कॉजिंग सम एंजाइटी एंड स्ट्रेस और ऐसे में घर से बेहतर कोई और शांत जगह हो ही नहीं सकती है ना सो ऑन दिस खुशी में बेशक है मन पटाखे फोड़ता पर जिंदगी है उसी का नाम जब ये दिल सबकी परवाह करता वाली नोट दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ लीविंग यू विद अ गाना विच इज अ क्लासिक एंड सेइंग वी ऑल हैव दैट फायरवर्क विद इन अस चमकने को तैयार एंड एमिंग हाई अप फॉर दैट आसमान बस ऑल यू हैव टू डू इज एक्सप्लोर विद इन एंड करनी होगी खुद से भी मुलाकात है ना

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खलीजी ममालिक के सरबराहान की दरख्वास्त पर ईरान पर कल होने वाला मुजवजा फौजी हमला मौखर कर दिया गया है। उधर ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में मुजाकरात जारी हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक पर ना तो किसी किस्म की बातचीत करेगा और ना ही कोई समझौता। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि ईरान को अब जल्द फैसला करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि ईरान को पुरअन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का मुकम्मल हक हासिल है। पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि जंग में होने वाली जिल्लत का अजाला करने के लिए किसी भी अहमकाना इकदाम को दोहराने का नतीजा मजीद सख्त और फैसला कुन होगा। खलीजी ममालिक से 5 साल में 164,788 पाकिस्तानी मुल्क बदर कर दिए गए। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने जुमे के रोज पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज की पार्लियामेंट कौम की नुमाइंदा नहीं है, ये जबरदस्ती कब तक चलेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने फिर ललकारा तो जोग्राफिया बदल कर उसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। राना सनाउल्ला कहते हैं कि जब कभी भी इत्तेफाक राय हुआ 28वीं तरमीम आ जाएगी। दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन सवाब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। आज मंडे है, अंजुम करीश साहब एक्सल के हवाले से गुफ्तगु किया करती हैं। मॉर्गेज की मालूमात शीराज हुसैन साहब आप तक पहुंचाएंगे। ईद फेस्टिवल के हवाले से शैला जाफरी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कनेर इनिंग शेड लाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, जबकि लाइव कॉल आपके लेंगे आजान मगरब के बाद। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूं। मेरे शेर पारे सामिन, माल जमा करने में इंसान जिंदगी खर्च कर देता है, आखिर वो देखता है कि उसका दामन माल से भर गया है लेकिन जिंदगी की मता खत्म हो गई है। वो सोचता है कि सब कुछ किस लिए था, ये इब्तला क्या थी, इसने क्या देकर क्या हासिल किया। जिंदा रहने के लिए सब कुछ था तो जिंदगी कहां गई, जब वक्त था माल नहीं था, अब माल है तो वक्त नहीं है। वो हैरत से देखता है अपने आप को, अपनी नाकबत अंदेशियों को, अपने माजी और अपने नामालूम मुस्तकबिल को। रात आए तो किरणें याद आती हैं। इंसान एक और मर्ज में भी मुबतला है, खुदाई करने की ख्वाहिश ने इससे इंसानियत छीन ली है। जो इंसान न बन सका वो और क्या बनेगा। हर आदमी भागे चला जा रहा है, क्या कयामत आने वाली है, कुछ अजाब नाजिल हो रहा है। इंसान के पास मसरूफियत है, फुर्सत नहीं, उसके पास वक्त नहीं है। खुशी मिले तो हंसने का वक्त नहीं, गम मिले तो रोने का वक्त नहीं। अजाब तो यह है कि उसके पास अपनी जात के लिए भी वक्त नहीं है, वो अपने काम में मुबतला है। काम, काम और सिर्फ काम। ये काम किस काम का जब इसके अंजाम का ही पता नहीं। इंसान जल्दी में है, उजलत में है, वो इब्तला में जकड़ा हुआ है। आसमान की तरफ देखता है तो पांव तले की जमीन निकल जाती है, जमीन की तरफ देखता है तो सर पर आसमान गिरने का खतरा लाहक है। इंसान क्या करे, इंसान वही करे जो उसे करना चाहिए। ये जिंदगी पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। आपके होने से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन आपके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारिए, अच्छा वक्त गुजारिए, बेहतर वक्त गुजारिए। जब तक आप हैं, आपकी सेहत है, सभी कुछ है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम। अब विशाल ही से लीजिए कमर्शियल इंश्योरेंस अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। मोटेल एंड होटल, एनी फ्रेंचाइज शॉप, फूड रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर्स, हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक, फार्मेसीज, फ्लीट ट्रकिंग एंड वेयर हाउसेज, गैस स्टेशन, स्ट्रिप प्लाजा एंड मोर। फॉर अमेजिंग डिस्काउंट विद प्रॉपर लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज कॉल विशाल त्रिवेदी 647-767-9852 647-767-9852 दैट 647-767-9852।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 It's 905-828-0009। Your login ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki guarantee hamari।
4: Apne pyar

0: चल इनके मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain. 647-321-7444. 6 4 7 3 2 1 74 44।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो। फिर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में है, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगी, और फीस जब केस सेटल हो जाता है उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आपके अपनी जुबान में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू इन वेरियो पाकिस्तान टोरंटो।
5: आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर हम जिंदगी को देखें और वक्त की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, और अभी साल शुरू हुआ था और मार्च आ गया। इसी तरीके से जिंदगी हमारी इंतहाई तेजी से गुजरती रहती है, और इसी तेजी की वजह से कभी कभी हमारे कार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कि हम जल्दबाजी में रहते हैं कि बस जल्दी घर पहुँचते हैं, जल्दी काम पे पहुँचते हैं, जल्दी ये करना है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात एक मिनट की जल्दी हमारी जिंदगी के लिए भारी पड़ जाती है। लेकिन जैसा कि हम आपको अवेयरनेस के तौर पे हमेशा बताते हैं कि अगर आप रोड पे होते हैं, तो कभी भी आपको बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस आपके लिए भी प्रोटेक्शन है और दूसरे लोगों के लिए भी। फर्ज कीजिए कि अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है 100% आपके फॉल्ट से, और आप किसी को हिट कर देते हैं, तब भी आपकी इंश्योरेंस उनको तमाम तर पेन एंड सफरिंग का पैसा देती है, और कोई भी चीज आपकी अपनी जिम्मेदारी या लाइबिलिटी नहीं बनती। इसीलिए हम इंश्योरेंस रखते हैं, और इसीलिए हम इतनी भारी रकम हर महीने देते हैं। कभी कभी मुश्किल भी होता है, और जब आप ये सब कुछ करते हैं और कार एक्सीडेंट होता है, तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कानूनी मदद मिलती है। आपको पर्सनल इंजरी लॉयर्स न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि आपके क्लेम का पैसा दिलवाने के बाद ही अपनी फीस लेते हैं। और जैसे कि मैं अपनी कंपनी के बारे में कहती हूँ कि हेमोफार प्रेजेंस की न सिर्फ आपके केस को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 416-570-0157। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जब आप हमें कॉल करते हैं, तो हमारे लॉयर्स न सिर्फ आपके साथ बैठ के आपको डिटेल बताते हैं, बल्कि आपके एक्सीडेंट ही की बात करते हैं।
4: बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नंबर नोट करें, 416-570-0157 416-570-0157। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। आपको लिए चलेंगे आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ।
6: खिसा की राजधानी में गुले नायाब जैसा था, जिसे तुम भूल बैठे हो वही तो ख्वाब जैसा था। कहीं पर फूल कांटों की तरह चुप थे पांव में, कहीं पर फूल कांटों की तरह चुपते थे पांव में, कहीं पत्थर सा रास्ता भी हमें कम ख्वाब जैसा था। मेरे दुश्मन के लफ्जों में भी ऐसी काट कब होती कि ये लहजा तो بالکل ہی میرے احباب جیسا تھا۔ جو ہوتا آسمان پر تو نہ جانے کیسا وہ ہوتا، کہ اس اجڑی زمین پر بھی وہ ایک مہتاب جیسا تھا۔ بہار اس کو برا کہتے تھے سارے لوگ محفل میں، ہمیں اچھا نظر آیا، دلے بیتاب جیسا تھا۔ خزاں کی راجدھانی میں گلے نایاب جیسا تھا، جسے تم بھول بیٹھے ہو وہی تو خواب جیسا تھا۔

0: food just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
1: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
0: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: जी हाँ, आपके लिए जो बहुत इंतजार था आपको, बहुत जल्द वो मौका आने वाला है। 26वां ईद उल अज़हा फेस्टिवल होने जा रहा है मैपल बैंकेट हॉल मिसागा में, 1325 विलिंगटन एवेन्यू ईस्ट मिसागा। डेटें आप नोट कर लें, 22, 23, 24, 25 और 26 मई को। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, अहमद एंड शहला जाफरी साहबा, आपके लिए एग्जीबिशन, प्रमोशन, सेल्स और इसके साथ साथ बिजनेस एक्सपो भी होगा। वैरायटी ऑफ स्टॉल्स होंगे, शॉपिंग, मेहंदी, फैमिली एंटरटेनमेंट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग एज यूजुअल। शहला जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल उन्हीं से लेंगे। शहला साहब, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, एंड तमाम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वालों को अहमद और शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का बहुत सारा सलाम, प्यार और दुआएं।
2: जबरदस्त, कुछ दिन बाकी रह गए हैं और बड़ा जोश व खरोश है। आपकी तैयारियां भी बड़ी जबरदस्त होती हैं और लोग अपने बिजनेसेस को प्रमोट भी करते हैं, साथ साथ जबरदस्त किस्म की वहां आप एग्जीबिशन होती है, ज्वेलरी देख लें, कपड़े देख लें, हर चीज मौजूद होती है। तो इस वक्त कैसी तैयारी है अब तक और क्या कुछ अच्छा मजीद होने जा रहा है?
3: बिल्कुल मजीद, बहुत, एक तो फूड स्ट्रीट होगी वहां पर, बहुत वैरायटी ऑफ खाने, वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स हमारे मिलेंगे, आइस कॉफी भी है, शेक भी है, एवरीथिंग। इसके अलावा बिरयानी बहुत मशहूर पॉपुलर रेस्टोरेंट लेकर आ रहा है। और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि इस दफा हमने ना अफगानी एग्जीबिशन का भी इंतजाम किया है, कि क्यों बहुत से हमारे आने वाले हैं उस तरफ से भी आते थे, उनकी ज्वेलरी हम सब लोगों में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एवरी डे माशाल्लाह स्टॉल बुक हो चुके हैं और मे बी एक या दो स्टॉल हर दिन में अवेलेबल है, जो कि कल तक शायद फुल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला सोल्ड आउट इवेंट होने जा रहा है ये मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, टॉयज का सबसे बड़ा एग्जीबिशन वहां लगेगा। इसके अलावा मैं अफगानी फूड भी, आपको स्नैक्स भी मिलेंगे वहां पर। अच्छा, फिर मैं आती हूँ कि ज्वेलरी का सबसे बड़ा फेस्टिवल मेपल बैंक्वेट हॉल में फ्रंट पे ही मिलेगा आपको। स्टेज के ऊपर एवरी डे डिफरेंट एक्टिविटीज रखी गई है। जो बच्चे 10 साल तक के हैं, वो अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट की है तो वो जरूर आए, हम उनको रेकग्नाइज करेंगे। वो मेरा नंबर 647-273-2393 वो मेरा नंबर कॉल करके अपने बच्चे को रजिस्टर करवाएं। और इसके अलावा संडे को हमारा वहां पर मदर्स डे है, बहुत जबरदस्त तरीके से। सैटरडे को हम फैशन शो लेकर आ रहे हैं वहां पर। तो ये इतनी सारी, इसके अलावा सबसे बड़ी ढोलकी जो है वो हो रही है चांद रात को। और उसमें मैं एक चीज और बताऊं अरशद, के वहां पर जो बेस्ट ढोल की ड्रेस है उसको इनाम भी मिलेगा, लिहाजा सब लोग तैयार होकर आए। एक और चीज का इजाफा करती हूँ, क्योंकि लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आजकल की इकोनॉमी, आजकल के मौसम और हर चीज ने थोड़ा सा लोगों को डाउन किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो है ना बिल्कुल जाग जाए, तो ढोलकी भी होगी और उसके साथ साथ झूमर लगा कर आए। तो झूमर फेस्टिवल है और वो उसका भी मुकाबला किया जाएगा और उसमें भी बेस्ट झूमर को जो है वो इनाम दिया जाएगा। तो झूमर फेस्टिवल हमारे ढोलकी हो रही है, जितने भी शादी हो रही है, ब्याह हो रही है, हम सब उन लोगों को डेडिकेट करेंगे। वो जबरदस्त स्टेज होगा, उसके साथ साथ वहाँ फोटो बूथ होंगे। फिर मैं एक बात और ये भी बता दूं आपको कि वहां पर फ्राइडे को 7 और 9 के बीच में हम नात मिलाद का सिलसिला भी रखेंगे और सारा दिन भी एक्टिविटी होती रहेंगी। 1 बजे डोर खुल जाएंगे, तो फ्राइडे को ओपनिंग सेरेमनी में जरूर शामिल हो। हमारे मिलाद और इन चीजों से ओपनिंग सेरेमनी होगी, ये 2 घंटे का उसमें इस किस्म का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हमारा दूसरी सेलिब्रेशन ईद की चलती रहेगी। बस अरशद, बहुत शुक्रिया आपका, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो का, कि मेरा आज ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच गया। तैयारी करें, आउटफिट्स निकालें और विन करने की कोशिश करें। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 647-273-2393। इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू को जरूर फॉलो करें आप, और वेबसाइट को भी विजिट करें कि किस तरह हम प्रमोट कर रहे हैं।
2: वही राइट, नाम नंबर नोट कर लें, 647-273-2393, 647-273-2393। बहुत शुक्रिया शैला साहब, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू
3: इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे न्यूज की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
4: अपना हम सफर, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स, मिस यू साथ।